0: Breaker Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: लेली नहीं मांगता, हमको मेरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
9: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को एक है हादरा दूर।

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले, होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पका

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये है लाइका गोल्ड, गोल्डन गीतों का खजाना। और मेरे भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त पुराना रवि शर्मा है मेरा नाम, और आपका दिल बहलाना है मेरा काम। पर उससे पहले थैंक्स कहें काजल को, शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और साहब अब हो जाइए तैयार, दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा लेकर गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और बहुत कुछ, बहुत सारी सूचनाएं, क्रिकेट हो या फुटबॉल, मैं उनसे जुड़ी जानकारी। और साहब और भी कुछ है, देखते हैं क्या क्या परोसा जाता है। जुड़ जाइए मेरे साथ। Thank you, Kajal. See you tomorrow.
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: हर साइज की चूड़ियाँ, हर उम्र की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ। भाई मैं तो सोचता हूँ यार, ये स्टूडियो में बैठ करके ना अकेले तो वो मज़ा नहीं आता, जब भाई नाजुक नाजुक हाथों में चूड़ियाँ पहनाने का जो स्वाद लेना है, चूड़ी की दुकान खोलूँ। हमारे एक दोस्त थे भाई, कलाकार थे वो, उन्होंने चूड़ियों की दुकान खोली हुई थी। क्या साहब वो छोड़िए, क्या रखा सच्ची बात हमने। दो गीत हमने आपको सुनवा दिए, और साहब पहला गीत गोरी तेरे अंग अंग में, वो कलसे का जिक्र हुआ, कलश जानते हैं ना, वो घड़े की आकार का भाई, छोटा बड़ा जो भी बर्तन होता है कलश कहलाता है, और बड़ा बहुत बड़ा हो तो कलसा कह देते हैं उसको, घड़े जैसा होता है। तो वो गीत आशा भोसले और किशोर कुमार व बप्पी लहरी का स्वर भी शामिल था उसमें, वो आपने सुना। दूसरा गीत चूड़ियों वाला, रफ़ी साहब की आवाज़ में, और बैक टू बैक संगीत सुनाते हुए हम आ गए हैं इस मोड़ पर जहां अब बताएंगे आपको पाउंड का रेट बाई SBI UK।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. क्या रेट दे रहे हैं आज भाई? Well, आज State Bank of India का रेट यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है, नहीं यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया रे? ए भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने पैसे दे रहे हो एक पाउंड दे बदले? 100 जी? नहीं 10 रहे है, कितने है गए? इतने है क्या? एक्सचेंज रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर वन पाउंड टुडे दे आर गिविंग 126.7 रुपीज, 126 रुपए 70 पैसे, 126.7 रुपीज। लेकिन इसके साथ कुछ और भी है भाई, वो कह रहे हैं कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच before end of June and you have a chance to win £75 voucher every day when you send over £1,000 and have 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और भाई ये जो FIFA World Cup, मैं तो पहले ना गलती से फूफा कह दिया करता इनको। फीफा वर्ल्ड कप भाई बहुत ज़बरदस्त आयोजन, कहते हैं कि अब तक के जितने भी आयोजन हुए उनमें ये सबसे बड़ा है। और भाई कल के रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो बधाइयाँ हो भाई जीतने वालों को। जर्मनी ने तो 7-1 से अपने विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल की है। इसके अलावा और भी टीमें जो आगे बढ़ रही हैं भाई, उन्हें शुभकामनाएं देते बता दूँ आपको कि भाई मैचेस जो हैं शाम को होते हैं ज़्यादा, तो शाम को हमारे यहाँ से जो है जो भी कुछ मैदान में होता है उसकी जानकारी लगातार प्रसारित की जाती है, और इस जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं भाई वो क्या कहते हैं अपने ये रैकर, हाँ रैक लॉ, इफ़ यू भाई उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर आप उनके संपर्क में आए, उन्हें कांटेक्ट करें और हमारा नाम मेंशन करें लाइका का, तो भाई वो 15 मिनट की लीगल एडवाइस बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं आजकल। यस, डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ़ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Yeah, like a goal.

0: महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत। भाई वैसे ही इस गीत को स्वर रफ़ी साहब ने भी दिया, लता जी ने भी दिया और फिल्म में सुलक्षणा पंडित की आवाज़ भी शामिल की एक और गीत में। फिल्म का नाम था तकदीर, 1967 में आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म थी।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐलान किया है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है, दुनिया भर में चर्चा है और इस समझौते के बाद तेल की कीमतों में गिरावट महसूस की गई है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक साझा बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी का भी जो है बयान इस पर आया है। लेकिन समझौते से जुड़ी एक और खबर, इसराइल के राष्ट्रीय मंत्री इतामार बेन गुर ने कहा है कि अमेरिका ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसे मानने के लिए इसराइल बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसराइल इसे माने या स्वीकार करे। विस्तार से खबरें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर ने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पाबंदी लगाने का, जो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का आज जो ऐलान किया है, कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध ही सही विकल्प है, अल्टरनेटिव है। बच्चों की सिक्योरिटी और खुशी के मामले में कोई समझौता करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये पाबंदी अगले साल 2027 की शुरुआत में लागू हो जाएगा। स्टार्मर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले नियम पारित कर दिए जाएंगे और ये प्रतिबंध यानी ये पाबंदी अगले साल की शुरुआत से लागू होगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है, दुनिया भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं वेस्टर्न एशिया में स्ट्रगल खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चनें पैदा हो गई थी और कई देशों में लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस सहमति के लागू होने से इलाके में शांति स्टेबिलिटी बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी जो है वो सुनिश्चित होगी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं की तरफ से भी एक साझा बयान जारी किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं के भी रिएक्शन आए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल संडे को कुल 4 मुकाबले खेले गए। इनमें से ग्रुप ई और ग्रुप एफ में 2-2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। ग्रुप ई में कोत डिवार ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया जबकि जर्मनी ने क्यूरासाओ को 7-1 से पराजित किया। वहीं ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा जबकि स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से मात दी। आज वर्ल्ड कप में ग्रुप एच और जी के 2-2 मुकाबले खेले जाने हैं। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे खेलेंगे जबकि स्पेन की टीम काबो वर्दे से भिड़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ इसमें इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुर की एक कड़ी प्रतिक्रिया, एक कड़ा रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो समझौता है ना, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम इसे माने। इतामार बेन गुर ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप का समझौता मानने के लिए हम विवश नहीं है, मजबूर नहीं है। इसराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक आजाद नेशन हैं और संप्रभु यानी सॉवरन राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो जिम्मेदारी इसराइल के नागरिकों, आईडीएफ के सैनिकों और यहूदी लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि इसराइल कोई अनस्टेबल देश नहीं है, हम स्थिर हैं, स्टेबल हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, साफ बता देना चाहते हैं कि हम अमेरिका से प्रेम करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभारी हैं, फिर भी इसराइल कोई बनाना स्टेट नहीं है। मैं ये फिर बार बार दोहराता हूँ और हर जगह पर दोहराता हूँ कि हम किसी समझौते को मानने के लिए विवश नहीं हैं। हिजबुल्ला को पूरी तरह ख़त्म किए बिना इसराइल किसी भी समझौते पर राजी नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। दैट्स द स्टेटमेंट ही सेड। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं और बहनों भाइयों आइए अब लौटते हैं संगीत की ओर।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता मंगेशकर और मुकेश जी के स्वर सुन रहे थे आप। फिल्म का नाम था हरियाली और रास्ता। और भाई गीत सुनते सुनते मेरी नजर गई इन संदेशों पर, मैसेजेस आए हैं। एक तो वत्सला लिख रही हैं कि रवि जी आज सोमावती अमावस्या है, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिव्य पावन अवसर पर हमारी मंगल कामनाएं स्वीकार कीजिएगा। भाई पुरुषोत्तम मास यानी जो एक्स्ट्रा मंथ जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार था अधिक मास, वो आज समापन हो रहा है। और आज सोमवार भी है और अमावस्या भी है, ये संयोग बहुत कम बनता है। पर कलयुग में तो काफ़ी बनता है, लेकिन द्वापर में पांडव इंतजार करते रहे लेकिन कभी भी सोमवार के दिन अमावस्या नहीं आई वहाँ पर। वत्सला जी आपको भी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। और भाई हमें कमल प्रभाकर जी जो हैं वो शुभकामनाएं भेज रहे हैं, जो क्रिकेट के साथ हमें जोड़े रखते हैं, तो उनसे भी बात होगी आगे चल के। एजाज चैशम में हमें सुन रहे हैं। और एजाज यार इतना ध्यान से क्यों सुनते हो प्रोग्राम्स को, भाई हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी यार। आई लाइक इट, उनको छोटी छोटी बारीकियों का भी पता है। रवि जी अभी अभी आपने गीत चेंज किया है म्यूजिक सुन करके, मैं बता सकता हूँ आपको, यू आर ग्रेट एजाज, थैंक यू वेरी मच। और भाई पम्मी जी स्लो में सुन रहे हैं, थैंक यू, उनको समाचार बहुत पसंद आते हैं। ज्योति गोल्डन वाला, राजेंद्र राज, आनंद तोमर, भरत गंगा राम, अनिल सोनी वियाना में जुड़े हमारे साथ आप।
1: Like a gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लीजिए साहब Southall Travel का संदेश भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि छुट्टियां पर क्यों नहीं जाते, छुट्टियां मनाओ ना। आप जाओ ना जाओ भाई, शर्मा जी तो जाएंगे, हाँ बता रहा हूँ अभी, हम तो जाएंगे भाई, छुट्टियां गुजारने जाएंगे। कहाँ जाएंगे क्यों बताएं, लेकिन वैसे मैंने भाई कई बार छुट्टियां जो हैं बिताई हैं Southall Travel के साथ। आई लाइक इट, मेक द समर मेमोरेबल विद Southall Travel, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। Southall Travel भाई आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका नंबर है 0208 5748410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th. 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
12: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
13: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
14: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
15: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
16: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
15: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
17: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
18: उड़िया

0: और ये आवाज तो है ना भाइयों महमूद साहब से जुड़ा लगता है। महमूद वैसे गाते भी थे, गुनगुनाते भी थे।
1: घोड़ा,
0: घोड़ा? सॉरी भाई, महमूद साहब ने ये घोड़े की आवाज थी।

0: किशोर कुमार की आवाज और महमूद का अंदाज। भाई कौन सी फिल्म में थे रिक्शा वाले? मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी, गाड़ी रिक्शा, मेरी रिक्शा सबसे निराली। कुमारा बाप था फिल्म का नाम, और साहब कुमारा बाप था या जनता हवलदार, आई डोंट नो, मैं क्या जानू पुरानी फिल्मों के बारे में।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के रेट्स नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.2 रुपीस, पाकिस्तानी 373.67, श्रीलंकन 448.83, बांग्लादेशी टके 165.06 एंड अफगान अफगानी 84.07.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.01 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che. Ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment. Laine avi rahya che. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah sathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Video Rama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखना रेजो हस्बैंड जी।
8: द वॉइस दैट टचेस एवरी सोल। स्टार एक्सप्रेस प्रेजेंट्स हरिहरन्स सोल इंडिया
9: लाइव इन लंदन। एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद द लेजेंडरी हरिहरन।
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: बोले तू क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
14: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र।
13: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
16: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Like a Gold।
17: लंदन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिजवे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन।
18: Be part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
21: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे।
22: अंकल तुम्हें पहला थी आवाज छो
23: आवाज इतने के बाद
21: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा, मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूं। और बहन भाइयों, इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। वक्त चिंतन का है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं क्रॉयडन से डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी का भेजा आलेख। कहते हैं आज 15 जून है, मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरा सारा परिवार मुझे शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन आज के दिन के साथ जुड़ी है एक और घटना, एक और व्यक्ति का जन्मदिन है आज। मेरा भी जन्मदिन है डॉक्टर साहब कहते हैं, तो डॉक्टर साहब पहले तो आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। पर कहते हैं कि आज ही के दिन उसी साल जिस साल मेरा जन्म हुआ था, एक और व्यक्ति जन्मा था जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जानते हैं क्या नाम है उसका? उसका नाम है अन्ना हजारे। भाई ये एक समाज सेवक हैं, लेकिन इनकी कहानी, इनकी जीवनी बड़ी दिलचस्प है। और डॉक्टर साहब याद दिला रहे हैं कि देखो, उनके और मेरे विचार कितने मिलते हैं, आचार और व्यवहार कितने मिलते हैं, आप उनकी कहानी पर झांक कर देखो। वैसे बता दें भाई, आज 15 जून को लक्ष्मी मित्तल, जो ब्रिटेन के सबसे धनवान व्यक्ति होते थे किसी समय, अब शायद उनका पहला नंबर नहीं है, लेकिन भाई वो भी एक बड़े दिलचस्प व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। लक्ष्मी मित्तल 1950 में जन्मे थे राजस्थान में। सुरैया, एक जानी मानी गायिका और अभिनेत्री, गुजरांवाला पाकिस्तान में जन्मी थी, पाकिस्तान उस समय नहीं था, लेकिन मतलब ब्रिटिश इंडिया में जन्मी थी। 67 फिल्मों में उन्होंने काम किया, 67 फिल्म्स, और 350 के करीब गीत उन्होंने गाए। तो सुरैया, सुरीली आवाज़ की स्वामिनी, उनका आज भाई दुनिया में होती तो वो भी अपना जन्मदिन मना रही होती, लेकिन हम जन्मदिन मना रहे हैं अन्ना हजारे साहब का और साथ में डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा का, जिन्होंने आज के लिए चिंतन भेजा है। कहते हैं कि कुछ लोग जीवन में एक निर्णय लेते हैं और फिर उस पर अपने जीवन को चलाते हैं। अन्ना हजारे की जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटना घटी कि वो एक प्रतिष्ठित समाज सेवक बन गए। 15 जून 1938 में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग 37 में भी बताते हैं, महाराष्ट्र में जन्मे थे वो। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और गांव की डेवलपमेंट के कार्यों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के निर्माण से गांव का निर्माण होता है, गांव का, गांव से समाज का निर्माण होता है, फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। अन्ना हजारे की जिंदगी का एक प्रेरक प्रसंग डॉक्टर जगदीश शर्मा लिख के भेजते हैं कि बात उस वक्त की है जब अन्ना हजारे भारतीय फौज में थे। वो एक सैनिक थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी तैनाती पंजाब के खेमकरण सेक्टर में थी। जंग चल रही थी, एक एयर अटैक में, एक हवाई हमले में उनके आसपास के उनके कई साथी फौजी शहीद हो गए, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गए। इस घटना ने उनके मन में गहरा एक सवाल खड़ा किया, मेरे सारे साथी शहीद हो गए, मैं ही क्यों बचा? क्या मतलब है इसका? क्या संदेश देना चाहता है परमपिता परमात्मा? मैं फौज में भर्ती हुआ था अपने देश के काम आने के लिए, मैं समर्पित हूं अपने राष्ट्र के, उसके बाद भी मैं बच गया, साथी शहीद हो गए, इसका मतलब है मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि प्रभु मुझसे कुछ और काम लेना चाहते हैं, मुझसे और सेवा करवाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में। फिर भाई उनकी रिटायरमेंट हो गई। फौज से रिटायर होने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें स्वामी विवेकानंद की एक किताब मिली। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया।
और एक जगह जाकर के उनकी आंखें जम गईं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी इंसान की सेवा भगवान की सेवा है। बस ये सेंटेंस उनकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन गया। फौज से रिटायरमेंट के बाद वे अपने गांव रालेगण सिद्धि लौटे। वहां उन्होंने देखा कि गांव गरीबी, सूखे और बेरोजगारी और नशाखोरी से जूझ रहा है। उन्होंने गांव के लोगों को साथ लेकर के जल संरक्षण, पानी को जमा करके स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, सामुदायिक श्रम दान यानी मिलजुल करके परिश्रम करना, मेहनत करना, ऐसा एक अभियान शुरू किया। और धीरे धीरे वही गांव जो पिछड़ा हुआ था, बदहाली का सिंबल था, पूरे मुल्क में आदर्श ग्राम के रूप में पहचाना जाने लगा। दूर दूर तक चर्चा हुई, लोग रालेगण सिद्धि देखने जाने लगे कि एक ऐसा गांव है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, कहीं से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जन भागीदारी का एक एग्जाम्पल बन गया कि लोग गांव के खुद इकट्ठे होकर के मेहनत करते हैं, अपने लिए हर चीज बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी उन्हें बाहर से लेना नहीं पड़ता। जिंदगी की कठिन घटनाएं भी नई दिशा दे सकती हैं और एक व्यक्ति का संकल्प, एक आदमी का इरादा पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। सेवा, डिसिप्लिन और ईमानदारी से इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। तो बहनों भाइयों, आज 15 जून को डॉक्टर जेसी शर्मा कहते हैं कि अन्ना हजारे जी का जन्मदिन तो है ही, मेरा भी जन्मदिन है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही दिन हमारा जन्म हुआ, एक ही देश में। मैं ब्रिटेन आके बस गया, अच्छी खासी प्रोफेसर की नौकरी, और उसके बाद मेरे मन में भी यही विचार आया कि मैं भी अपना जीवन सिर्फ अपने लिए सीमित न रखूं, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। और कहते हैं कि ब्रिटेन में रहते हुए मैंने भारत में एक ये विश्वविद्यालय में जॉब की, सेवा का कार्य अपनाते हुए कि मैं उस देश के लिए, उस समाज के लिए भी कुछ करूं जहां मेरी ज्यादा जरूरत है। तो सोचिए बहनों भाइयों, लोग वहां से यहां नौकरी करने आते हैं और डॉक्टर शर्मा यहां से वहां पढ़ाने जाते, छुट्टियों में यहां लौट आते, परिवार यहां, यहां के सिटीजन, लेकिन भारत में उन्होंने अपने जीवन के कई अमूल्य वर्ष सेवा के रूप में विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर की और एक डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जॉब करते हुए गुजारे। भाई हमें गर्व है इन विचारों पर, इन आदर्शों पर, कि एक समय ऐसा आता है जब आपके मन में भी विचार आता है कि अपने लिए तो जी लिए, अब जिए समाज के लिए, अब जिए देश के लिए, अब जिए मानवता के लिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू अन्ना हजारे एंड हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर शर्मा।

0: बादल फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में आपने सुना आज के चिंतन के साथ। चिंतन में शामिल आलेख हमें डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी ने भिजवाया।
1: चिंतन, चिंतन।
0: क्रोडन से डॉक्टर शर्मा ने ये लेख भिजवाया और भाई आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हम उन्हें बधाई संदेश भिजवा रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यू आर 88 सर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेंचुरी भी हम बड़ी धूमधाम से मनाएं, शतक आप लगाएं और हम यहां से चिंतन में आपको बधाई भिजवाएं उस समय भी। आपको जन्मदिन की बधाई देने वालों में आपके परिवार के अन्य लोग भी, भाई आपकी तीनों बेटियां, दामाद, ग्रैंड चिल्ड्रन और आपके सभी मित्र संबंधी दूर दूर से आपको शुभकामनाएं भिजवा रहे हैं। और भाई साथ ही आज ही के दिन आपके साथ ही उसी साल जन्मे थे अन्ना हजारे, युग परिवर्तक कहते हैं भाई, उन्होंने समाज के लिए, अपने गांव के लिए और अपने देश के लिए जो कुछ किया है, आपने भी परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारी ओर से आपको शत शत प्रणाम। और बहन भाइयों, आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम लाइका रेडियो नेटवर्क। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
0: याद दिला दें आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आइए अब जरा नजर डाल लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK एक पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए दे रहे हैं।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 126.7 rupees for £1. लेकिन इतना ही नहीं, they say that if you send money to India via SBI YONO app or branch before end of June, you can be one of the by winners, you can be to win the £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when you send over £2,000. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
4: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और साहब फीफा का जिक्र कर रहे हैं तो भाई वर्ल्ड कप 2026 में कल संडे को कुल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से ग्रुप ई और ग्रुप एफ में 2-2 मुकाबले खेले गए। आज की बात करें तो आज ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच मैच होना है, जबकि स्पेन की टीम काबो वर्दे से भिड़ेगी। इसके अलावा ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी और एक और मैच इसी ग्रुप में बेल्जियम और मिस्र के बीच भी खेला जाना है। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्या हो रहा है ग्राउंड में भाई, वहाँ से हम आपको जोड़े रखेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के साथ। लेकिन एक बात और बता दें आपको, ये जो हमारे प्रायोजक हैं रैक लॉ वाले कहते हैं, डोंट फॉरगेट यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका। ये लाइका नाम बड़ा फायदेमंद, याद रखिएगा, उन्हें फ़ोन करके अगर आप लाइका मेंशन करेंगे 15 मिनट की जो कानूनी सलाह है मुफ्त आप हासिल कर सकेंगे।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
5: This is Leica Gold.

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra podcast update.
3: और भाई बता दिया आपको लाइका एक्स्ट्रा पर जो हमारा नया एपिसोड जो है वो उपलब्ध है और इस एपिसोड का नाम है बॉलीवुड रिवाइंड ए थ्रोबैक टू 2000s होस्टेड बाय अनुज राडिया। देखना मत भूलिएगा भाई हमारे जो एपिसोड सब पुराने भी वहां पर उपलब्ध हुए और लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब अमेजन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Fevertree Mexican Lime Soda. You're not like other mixers. Your zesty bite, twist of yuzu. Sure, you're perfect with vodka. But even on your own, you make the most exquisite soft drink. Fevertree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub Best service with unbeatable price.
3: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas. Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners Leica Radio.
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे मेकिंग समर फील बेटर दिस इज लाइका गोल्ड
3: अपने शहर में शांति है पर घर में शांति नहीं है क्योंकि बीवी अपना कहना मानती नहीं है। अरे भाई किसकी बीवी कहना मानती है, खाम खाम ऐसी बातों को क्यों छेड़ते हो आप।
15: अरे बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक।

0: अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी खोने की जरूरत नहीं है, अभी साथ होने की जरूरत है। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और तब तक आप इधर उधर नहीं होंगे। और 1 बजे की खबरों के बाद बाली भाई होंगे, फिर आप उनका साथ निभाएंगे। दिस इज लाइक अ रेडियो नेटवर्क, माय नेम इज रवि शर्मा और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर बहन भाइयों मैं साथ हूँ आपकी, आप साथ हैं मेरे, हम साथ साथ हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And let me tell you, SBI UK का रेट आज का भाई, वो कहते हैं कि हमारे थ्रू पैसे भिजवाइए भारत, अच्छा रेट चल रहा है, अच्छा मौका है। तो रेट पहले बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK टुडे गिविंग फॉर £1 भारतीय मुद्रा में 126.70 रुपये, 126.7 रुपीज दे आर गिविंग। बट नॉट ओनली दिस, दे से दैट इफ यू सेंड मनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, इस महीने के आखिर तक अगर आप पैसे भिजवाते हैं £1,000 तक, तो 75 pounds वाउचर एवरी डे जीतने का अवसर है। इसके अलावा इफ यू सेंड ओवर £2,000, तो भाई 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जीतने का एवरी वीक चांस है। तो जरूर भिजवाइएगा पैसे और फायदा उठाइएगा ऑफर्स का।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: यस, टी एंड सीज अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: लाइका गोल्ड।
3: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
4: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protected.
8: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment laine avi rahya che Sakhna Rejo Husband ji, Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk, call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860 280655. सखना रेजो हस्बैंड जी।
9: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
10: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
9: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
10: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
9: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
10: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
9: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: Gadbad gotala che. Problems mota che. Par badu alright che.
14: Mechane back to back 3 movies joi lidi.
2: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie Badu Alright Che.
14: Betan kalakmal pacho avi jase ne pachi badu alright thai jase.
2: In cinemas on 12th of June. For more info visit Bakrania Media's Instagram handle.
15: Devu lage che ke picture chalche.
9: London, good news. आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
16: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
17: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भाई भाइयों जानते हैं इस सप्ताह के कलाकार का नाम क्या है? अरे साहब बड़ी सुरीली आवाज़ है, भला हटके थोड़ा सा अंदाज है उनका, और भाई क्या कहें इस क्या कहते हैं, अगले महीने तो उनका यहाँ पर एक कॉन्सर्ट भी है जिसे देखने के लिए लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। उस आवाज़ और उस अंदाज का नाम है हरिहरन। ए हरिहरन।

कितना रियाज है इस गायन के पीछे, कितना अनुभव है, कितनी मेहनत है, कितने रंग हैं। जिए हरिहरन।

0: रंग है साहब, कौन नहीं रंगना चाहेगा इस रंग में भाई। और देखिए ये संगीत में ही जादू है कि मेरे महबूब इलाही, और गाया जा रहा है गणेश उत्सव के मंच पर। भाई ए हरिहरन साहब को पहली बार मैंने लाइव सुना था 1989 में, जब ये यहाँ अलेक्जेंड्रा पैलेस में लता जी के साथ गाने के लिए आए थे। और साहब आवाज़ में लगातार निखार आता ही जा रहा है, छा जाते हैं मंच पर, ये सिर्फ गाते नहीं हैं खा जाते हैं ऑडियंस को। भाई जी चाहता है कि वही ऐसे महान कलाकार के ना चरण छूले जाके, जब वो या आप इनको सुने सुनते रहें, घंटों सुनते रहें। 4 जुलाई को यहाँ साउथ बैंक में भाई इनकी परफॉर्मेंस है, मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन ए हरिहरन साहब इतने सुरीले गायक कलाकार हैं। लता जी जब आई यहाँ पर अपना शो करने के लिए पंडित नेहरू जी की सेंटिनरी के अवसर पर, तो भाई उनके सामने सवाल ये था कि राज अपने मुकेश जी के गाने गाने के लिए वो नितिन मुकेश को साथ लेके आई, रफ़ी साहब के गाने गाने के लिए सुरेश वाडकर को अपने साथ लेके आई, और साहब क्या बताएं आपको कि मन्ना डे जैसे क्लासिकल सिंगर की आवाज़ का रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने चुना ए हरिहरन को। भाई मैं तो अभी आपने थोड़ा सा रंग देखा उनका, सुना इस सप्ताह के वो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, कई गीत हम उनकी आवाज़ में सुनाएंगे। लेकिन ही इज़ सच अ ग्रेट आर्टिस्ट के आप उनका ध्यान भी करते हैं ना, तो सुरीलापन आपकी आवाज़ में आ जाता है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: बात भाई गायन की हो रही है और गायक कलाकारों की चर्चा कर रहे हैं हम, तो बताएं आपको बहुत ज़्यादा गीत तो आप हमारे यहाँ से रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना डे, भाई लता जी, आशा जी, इनकी आवाज़ों में सुनते हैं। लेकिन कुछ गायक कलाकार ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे जा चुके हैं, पर आवाज़ तो हमेशा अमर है ना, आप जानते हैं। एक आवाज़ का जिक्र करें जिनका आज जन्मदिन पड़ता है, वो दुनिया में नहीं है लेकिन आवाज़ तो है, क्योंकि स्वर तो ईश्वर है बहनों भाइयों। एक ज़माने में लोग सुना करते थे सुरैया की आवाज़, और सुरैया और शाम की गायन के क्षेत्र में बड़ी एक मशहूर जोड़ी थी भाई। आइए उस आवाज़ को याद करें, क्योंकि आज सुरैया जी का जन्मदिन पड़ता है।

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: देखिए साहब, वैसे तो सुरैया का वो दौर था जब सुरैया लाहौर में जन्मी थी और उनका जो पूरा नाम था वो था सुरैया जमाल शेख, तो मुस्लिम परिवार से थी। लेकिन साहब सुरैया और शाम की जोड़ी ही नहीं, सुरैया और देवानंद के साथ भी उनका नाम जुड़ा। सुरैया कई फिल्मों में हीरोइन के भाई रूप में भी आईं और गायिका के रूप में भी उन्होंने खूब ख्याति कमाई। लेकिन साहब सुरैया बेहद खूबसूरत और बेहद सुरीली आवाज़ की मालकिन थी। 2004 में उनका निधन हुआ 74 साल की उम्र में, और अपने ज़माने की वो टॉप हीरोइंस में और टॉप गायिकाओं में शामिल रही थी। मुझे पूरा यकीन है वाली भाई बहुत सारी जानकारी लेके आएंगे उनके बारे में, पर फिलहाल उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत हमने उन्हें समर्पित किया। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है भाई, क्रिकेट चल रहा है ना आजकल।
3: ये है लाइका गोल्ड Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica
2: भाई शाम को मैच चलते हैं तो कमल प्रभाकर जानकारी देते हैं वहाँ से जो कुछ भी ग्राउंड में चल रहा था। लेकिन इतना बता दें कल का जो मैच खेला गया ना वो भारत और पाकिस्तान के बीच था, और भाई वो महिलाओं का मैच हो या अंडर 19 का हो या फिर पुरुषों की टीमें हो, ये भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होता ना वो अपने आप में ही किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता। तो भाई बहुत लोग जो है दिल थामे, कलेजा थामे और पता नहीं क्या क्या थामे इस प्रोग्राम को, इस मैच को देख रहे थे। और इस मैच में साहब शुरू में लगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं पाकिस्तान की गेंदबाज, जब दो विकेट जल्दी जल्दी चटका दिए। भाई हमारी वो बिटिया, हमारे शहर की लड़की जो है शेफाली वर्मा, उसने आते ही पहली गेंद पे छक्का लगाया और दूसरी गेंद पे फिर वो आउट हो गई, और इतनी जल्दी आउट होने में लगा कि भाई पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है कमाल की रहेगी। दूसरा विकेट भी जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद जमकर खेली भाई भारत की महिलाएं, और पाकिस्तान के मुकाबले उन्होंने 170 रन जोड़े और पाकिस्तान की टीम को फिर 106 रन पर समेट दिया। बड़ी निराशा हुई पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को, लेकिन साहब क्रिकेट इज़ लाइक दैट। तो 64 रन से उन्होंने ये मैच अपने नाम कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के मैच का इंतज़ार रहेगा, विल सी कौन जीतता। भाई अभी तो मैच शुरू हुआ है मुकाबला वर्ल्ड कप का, हम जोड़े रखेंगे आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप के साथ, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप।
3: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW पेज। विजिट Chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LAIKA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क पर स्वागत है आपका। और भाना भाई एक चीज़ और आपको याद दिलानी है कि भाई हमारे यहाँ से कई चीज़ों का जो संबंध है, कई चीज़ों के साथ हम जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क जो है अब जुड़ा हुआ है किसके साथ, हरिहरन का जो कार्यक्रम हो रहा है 4 जुलाई को, उसके साथ भाई हम रेडियो पार्टनर्स हैं उनके। तो टिकट्स एट southbankcenter.co.uk इंतज़ाम कर लीजिएगा। बहुत सुरीले गायक कलाकार हैं जैसा मैंने कहा, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं हम लाइका रेडियो नेटवर्क, सो यू मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस शो।
3: ये है लाइका गोल्ड।
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। भाई पता नहीं यार क्या करेंगे, इतने दुपट्टे का दुकान खोल लिए क्या, सबने एक एक दुपट्टा ले लिया उसका बिचारी का। वापस करो यार, क्या करना इतने दुपट्टों का। लता मंगेशकर की आवाज। और भाई ये गीत और ये फिल्म पाकीज़ा अपने ज़माने की हिट फिल्म रही, फिर अभिनेत्री भी हिट थी भाई। वो बहुत छोटी उम्र में चले गई दुनिया से, मीना कुमारी। भाई मैं क्रिकेट की बात जब कर रहा था ये तो बताना भूल ही गया कि भाई वो नाराज़ हो जाएंगी मेरे से, दीप्ति शर्मा के प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके पाकिस्तान के, और एक खिलाड़ी को रन आउट भी किया। और भाई बैटिंग में भी वो जो है अपना थोड़ा बहुत योगदान उन्होंने दिया, लेकिन दीप्ति शर्मा एज ए प्लेयर ऑफ द मैच वंडरफुल, क्या कहते हैं भाई, प्रदर्शन जो है उन्होंने खेल का किया था इसमें, जो भारत ने कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता। राइट, क्रिकेट से जोड़े रखेंगे आपको, हम सुनते रहिएगा नायका रेडियो नेटवर्क। साउथ हॉल ट्रेवल का संदेश, छुट्टियों पर जाइए ना, कहाँ जाएं, मैं तो जा रहा हूँ भाई बहुत दूर का डोमिनिक रिपब्लिक। मेक दिसंबर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रेवल, कॉल 0208-574-8410। भाई मुझे तो हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट देते ही हैं वो, पर वो मेरा ख्याल सभी को देते हैं, उनके लिए हर कस्टमर जो है बड़ा VIP होता है। मैं, मुझे याद है कि परिवार के साथ गया था तो सब कुछ बुक किया उन्होंने, होटल भी, फ्लाइट भी, हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि वहाँ ग्रैंड कैनियन में जाने के लिए, और साहब मज़े आ गए थे। तो थैंक यू साउथ हॉल ट्रैवल, थैंक यू वेरी मच।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: So, what's on your to-do list today? Why don't you check if you're eligible for pension credit? It tops up your pension income and also opens up help with heating bills, council tax and more. Search pension credit on gov.uk or call 0800 99 1234. There's nothing to lose. Check today. Pension credit. Credit where credit's due. Eligibility criteria apply.
3: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
9: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
10: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
11: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
10: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
12: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
10: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
13: Maa, dulhan ke liye makeup.
10: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAP P.S. Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laabh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
18: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
19: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
18: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
9: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: आइए आपको मिलवाते एक और महान गायक कलाकार से, पहचानिए इस आवाज को।

0: ओह माय गॉड, यहाँ पे सानुदा को सुन के तो मजा ही आता है, लेकिन पूर्णिमा जी, सुषमा श्रेष्ठा, उनकी आवाज सुनकर कुछ एक फ्रेशनेस मिलती है, बिकॉज 90% सॉन्ग्स आई वुड से वी आर विद अलका याग्निक, एंड देन ऑब्वियसली कविता कृष्णमूर्ति, देन साधना सरगम, इन सब के साथ सानुदा ने गाया. लेकिन कुछ कुछ सिंगरों के साथ इन्होंने जब गाया तो गाने बहुत मतलब अच्छे लगते हैं. एंड ऑफ कोर्स स्टार्ट द बॉल रोलिंग विद इवनिंग इन पेरिस. आज क्या क्या होने वाला है. द वीकेंड वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक विद द न्यूज ऑफ आतिफ असलम डूइंग एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शो. This was the general consensus of everyone, saying he pleased every person in the audience. इन्होंने अपने गाने सुनाए, पंजाबी गाने सुनाए, इन्होंने बॉलीवुड के फेमस कुमार सानू से लेकर सब सिंगरों के गाने इन्होंने मिक्स करके जैसे सुनाए, मतलब के ही रियली वन एवरीबडीज हार्ट. एंड अवर लाइका परिवार वॉज देयर. Unfortunately, I couldn't make it because of other commitments. But boy, oh boy, that was one beautiful show. And now the next best talk of the town happens to be Hariharan. Hariharan ji se weekend ko bhi baat hui. He is really looking forward to coming and entertaining you to the fullest. Inke sab filmi gaane inhone shamil kiye hue hain, aur kuch famous ghazals, aur kuch kuch ek do colonial cousins. मतलब एक वेरिएशन ऐसी इन्होंने बनाई है. मैंने पूरा लिस्ट देखा. काश मैं सबको व्हाट्सएप करके ये लिस्ट भेज सकता, लेकिन बिलीव यू मी, यू हैव गॉट टू बिलीव मी, व्हाट अ शो इट्स गोना बी एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल ऑन 4th of July. वो बाद में ही इज़ अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक, सो उनका गाना भी हम सुनाएंगे और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे कहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं. वर्ल्ड कप, ओ माय गॉड, दैट इज़ रियली रियली हैपनिंग. एंड वर्ल्ड कप के अंदर मैंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जब सुनी तो मैं आई कुडन्ट वेट टू शेयर इट आउट विद यू. जैसे कि देर इज़ अ प्लेयर कॉल्ड निमेचा, NMECHA. And he's the player from Curaçao. And Germany versus Curaçao. Okay, Germany 7 and Curaçao 1. Lekin wo one goal, pehli 6th minute mein, Mecha, isne score kiya. That happens to be the quickest goal of the tournament so far. And the matches are going so well. Netherlands, जिन्होंने दो गोल स्कोर किए, और जापान ने भी लास्ट मिनट पे इन्होंने सेकंड गोल करके इक्वलाइज कर दिया. ऐसे ऐसे मैचेस हो रहे हैं. ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को, एंड स्कॉटलैंड स्कोरिंग देयर फर्स्ट एवर गोल इन द वर्ल्ड कप काइंड ऑफ थिंग. एंड क्यूरासेओ अगेन, बट दे वर हैप्पी दैट दे स्कोर्ड वन गोल. एंड मैनुअल न्यूअर, दैट इज NEUER, मैनुअल Neuer, he is the goalkeeper of Germany, and this is the oldest ever player of Germany, that is 40 years and 79 days old. Now that is a good going for him, really. और जब जर्मनी 7 गोल स्कोर कर रही थी, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ था. पहला गोल हो गया, उसके बाद he wasn't that busy, but then we appreciate him playing football at 40 years and 79 days, and wish him a very long football life, I would say. Yes. And second hour mein hum baat karenge Suraiya ji ki. What a lady, what a lady, and what a love affair. She could not marry the man she loved, and then she never got married. Ye kahani ek khatarnak kahani hai, really. और जैसे देव साहब के साथ हैं, देव साहब ने खुलेआम कहा था कि ही लव्ड हर सो मच बट कुड नॉट मैरी हर. इसमें ऑब्वियसली रिलीजन का मामला आ जाता है, मज़हब का मामला जब आ जाता है. ग्रैंड मदर वॉज स्टॉन्च एंड वुड नॉट अलाउ हिम हर टू मैरी हिम. तो ये कहानी भी हम दोहराएंगे, जो आपको मालूम ही होगी, जिनको नहीं मालूम उनको बताएंगे, और इनके गाने भी सुनेंगे, ऐसे चटपटे गाने. सुरैया द ग्रेट एक्ट्रेस, शी वॉज वन नॉच higher than other actresses. You know why? Because she was not only a great actress with a lot of versatility, but she also sang her own songs. Except जब प्यार हो गया था देव साहब के साथ, तब उनको ज़्यादा time चाहिए था देव साहब के साथ, तो वो लता जी को गाने देती थी गाने. So that is the story of Suraiya in the second hour.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And we have the rates right here. I'm trying to find out the rate for SBI UK and the latest rates, which fluctuate quite often. We have one sterling pound can get you up to 126.7 Indian rupees. You send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pound voucher every day when you send over 1000 pounds. Also a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 020-8574-8410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
12: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
13: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ 35 pounds, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री
16: perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
17: Rich, authentic taste every single time.
16: Royal Chai, brewed for business.
17: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
18: ગડબડ ગોટાળા છે, પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે, પણ બધું ઓલરાઇટ છે.
19: મેં છે ને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી.
18: ગેટ રેડી ફોર અ ફુલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગિલાની એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી. બધું ઓલરાઇટ છે.
19: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે.
18: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
20: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
21: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
22: Like a Goal. London ka number 1 Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Goal. Aur online suno likeagold.com pe.
23: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

Hats off to Ghulam Muhammad, जिन्होंने पाकीज़ा का गायन म्यूजिक डायरेक्शन किया था. मिर्जा गालिब की लिखी हुई ये बहुत खूबसूरत गीत. राज कपूर जी के साथ इन्होंने फिल्म दास्तान में जो एक्टिंग किया, और रफ़ी साहब और सुरैया जी ने गाया, नौशाद साहब ने संगीत दिया, शकील बदायूं उन्होंने गाना लिखा. तारारी तारारी स्विंगिंग सॉन्ग.

0: देव साहब के साथ इनका इतना अच्छा रिश्ता था, दे यूज टू कॉल ईच अदर निक नेम्स. और जैसे देव साहब को शी यूज टू कॉल हिम स्टीव एंड देविनिया, एंड वो कहते थे सुरैयाना इटालियन एक्सेंट में, एंड वी यूज टू कॉल हर नोजी. बड़ा प्यार था दोनों को एक दूसरे से.
1: Like a gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.
0: 67 films and 338 songs. Suraiya Jamal Sheikh. Umeed hai aapko ye tribute pasand aaya ho. Of Suraiya on Like a Gold. Main hoon Bali Brahmbhatt.

0: क्या गाने। I mean, I always get into another world when I listen to songs like Zihale Miskin. और काफ़ी मतलब ये तहकीकात करनी पड़ती है जानने के लिए कि क्या है. एंड इट इज़ बेसिकली आमिर खुसरो, obviously who doesn't know that name, who uses two languages, एक ब्रज भाषा and Persian in his ghazal Zihale Miskin. So this ghazal is all about love, longing and separation. And its meaning word by word aap dekhen to itna interesting banta hai ki ek simply samajh aati hai to maza aa jata hai sunne mein bhi. Without knowing the meaning bhi gana acha lagta hai kyunki gaya bahut khoobsurti se Shabbir Kumar aur Lata ji ne. Zihale Miskin, यानी के look at the poor, and then Makun Baranjish, it's a don't look at it with anger, and Bahale Hijra, in the state of hijra or separation, Bechara Dil Hai, the poor heart. Don't look at the poor me with contempt because my poor heart is going through the separation from the beloved. That jod ke ye baat banti hai aur khoobsurti se likha gaya. And then film Dhanwan ka gana, aha ha ha, ye aankhe dekh kar, Lata ji again with Suresh Vadkar ji. To aage badhte hain aur ek competition ka time aaya hai. Competition mein kya kya hone wala hai अभी बताता हूँ, सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा. यू आर गोइंग टू गेट कपल ऑफ टिकट्स टू अ शो.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन.
0: एंड हियर वी गो विद द कंपटीशन. यस, लाइक अ रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप exclusively with Dharma Productions for the Gujarati film Jindagi Once More. Yes, usually to Zindagi hota hai, jab Gujarati title hota hai, to Jindagi Once More. Starring none other than the man who came up with the phrase Enni Maane. He's coming once more, starring Siddharth Randeria. I called him earlier, congratulating him. He is traveling extensively from Rajkot to Ahmedabad to all over Gujarat kind of thing to promote the film and everything. So, kal 1:30 baje hum unse baat karenge aur wo hame batayenge unka experience aur ye film kya hai. It releases at cinemas this weekend. Now, we have a pair of tickets to give away to a special invite-only screening of Jindagi Once More at the Courthouse Hotel near London's Oxford Street Station. अभी से सुन लो, अगर नहीं जा पाते तो प्लीज डोंट अप्लाई फॉर इट. जिंदगी वंस मोर एट द कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन्स ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन. दिस इज अ स्पेशल इनवाइट ओनली स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म. द स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस दिस थर्सडे 18 जून एट 6 PM. थर्सडे 18 जून एट 6 PM. एंड यू सेंड द वर्ड जिंदगी, JINDAGI, जिंदगी में से जे कर दो जेड के जगह तो जिंदगी बन जाता है. सेंड द वर्ड जिंदगी फॉर यू टू विन अ पेयर ऑफ टिकट्स विद योर फुल नेम एंड टेलीफोन नंबर. नाउ विनर्स विल नीड टू कलेक्ट द टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ द स्क्रीनिंग एंड द टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद एनी अदर स्क्रीनिंग और फिल्म. सो गिव इट अ गो एंड बी देयर ऑन थर्सडे 18 जून एट 6 PM टू वॉच जिंदगी वंस मोर.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you 126.7 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Wow, today's match is 5 p.m. is going to be Spain versus Cabo Verde. That's Group H. 8 p.m. is Belgium versus Egypt. That is Group G. And 11 p.m. Saudi Arabia versus Uruguay. Do you know the first ever 1930 May jo World Cup hua tha was in Uruguay. First ever World Cup. Yes, originally called Victory. Actually, jo award diya jata tha, the cup, that is the FIFA World Cup, was known as Victory. The Jules Rimet Trophy was the original prize awarded to the winner from 1930 to 1970. Iske bare mein aur bataunga later on. But watch the matches tonight.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: You're listening to Bali Brahmbert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
1: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
4: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
6: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
4: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
6: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
5: To open the scoring, he does!
4: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
5: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड।
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 0208574 8410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
12: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
13: लंदन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन।
14: थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड पेमेंट्स? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
15: Aa September, Paris ma itihas lakhai rahyo che.
16: BAPS mandir no opening ane Star Tours tamne lai jai rahyo che aa pavitra yatra par.
15: Europe na 3-9 divas na tours.
16: France, Switzerland, Italy ane Germany sathe.
15: Darshan pan ane Europe pan.
16: Seats जल्दी भराई रही है, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
15: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
16: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
18: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Biker Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The A4 Great West Road still partially blocked this evening between the Park Grand Hotel and Sutton Lane is due to a building fire. Traffic queuing in the area, still queuing on the A406 North Circular Road both ways at the Hangar Lane Gyratory. Slow on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout, and then on to North Holt Station. Queuing on the A312, the Parkway southbound before the M4 Junction 3 to the Tube, and severe delays on the Elizabeth Line between Abbeywood and Reading, and between Whitechapel and Abbeywood. It's due to an earlier trespass incident at Custom House. That's your latest traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
4: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 p.m. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
5: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Daniel Prime Location
7: High Appreciation
8: in Dubai
9: बोले तू ये क्या कर रहा है रे
10: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
9: ये तो बताओ कोई पता चला
10: गुरु गुरु
11: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
12: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208-514-5400 बुक ऑनलाइन एट Eventbrite
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
15: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
17: Think you might be overpaying for card payments?
13: Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
17: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
0: Ashwini, in for Anisa Nasir on the evening show on Leica Gold.
18: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
19: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: सभी जिन्होंने अभी अभी ट्यूनिंग किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। भाई जैसे ये शोले वाला म्यूजिक आ जाता है, आप लोग समझ जाते हैं कि आ गई है आपकी दोस्त यहाँ पे। तो भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आके अपनी अटेंडेंस फटाफट लगवाइए और बताइए कैसे हैं आप सब। बढ़िया है ना, होंगी। जब मंडे निकल जाता है, इवनिंग आ जाती है, तो हा हुश है ना, वो वाली फीलिंग आती है। अब इस हुश को आहा में बदलने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे पूरे तीन घंटे मस्ती मज़ा गपशप इंटरैक्शन। तो असाइनमेंट देगी दीदी? अरे ऐसे कैसे होगा कि असाइनमेंट नहीं आएगा आप सब के लिए। तो हुआ यूँ है कि मैंने जो एक नई वेब सीरीज अभी आई है अमेजन पे, दैट इज़ रिगार्डिंग टाटा जे आर ई टाटा पे ये सीरीज बेस्ड हैं और कैसे किस तरीके से टाइटन वॉचेस बनी उस पे ये सीरीज है। तो मैं अभी मैं सेकेंड एपिसोड पे हूँ, उसके आगे मैं अभी जा नहीं पाई। सो दैट एक्चुअली गेव मी एन आइडिया कि क्यों ना आप सबसे पूछा जाए कि आप सबको अपनी अपनी रिस्ट वॉच कब मिली थी। ऑब्वियसली आई एम अ स्टोरी टेलर, मैं अपनी स्टोरी तो सुनाऊंगी। सो मुझे मेरी फर्स्ट वॉच मिली थी इन ईयर 7। माय पापा वांटेड टू गिफ्ट मी दैट ऑन माय बर्थडे, लेकिन हमारे कोई एग्जाम्स आने वाली थी एंड बचपन से मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ ना अर्न करना चाहती हूँ। अब कहीं जाके समझ में आया कि एमए भी मिल जाए ना तो ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक हमेशा एक गोल और टारगेट रखने की आदत सी रही बचपन से। तो आई टोल्ड माय पापा कि पापा मुझे जो भी मेरा एक परसेंटेज था मुझे वहाँ तक पहुँचने दीजिए। इफ़ आई गेट ऐसे ऐसे पेपर्स में इतने इतने मार्क्स मिलते हैं, इतना परसेंटेज मिलता है, तो फिर आप मुझे मेरी वॉच लेके दीजिएगा। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट रिस्ट वॉच। अब आप जाइए अपने अपने बचपन में, फटाफट याद करिए। नहीं आ रहा है फटाफट, टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम लेके मुझे। आई एम श्योर आप लोगों के पास में बहुत सुंदर कहानियाँ होंगी एंड यही तो हम करते हैं ना इस शो में। यहाँ पे शेयरिंग होती है आपके कहानियों की, मेरे कहानियों की, और इन कहानियों को हम बुनते हैं बहुत सारे गीतों के द्वारा। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 126.70 Indian rupee. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.

0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
2: ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच में मैच हुआ जिसमें आइवरी कोस्ट ने एक गोल दागा। उसके बाद ग्रुप एफ में स्वीडन और ट्यूनिशिया के बीच मैच हुआ तो स्वीडन ने दागे हैं 5 गोल, ट्यूनिशिया ने दागा केवल 1 गोल। ग्रुप जी में बेल्जियम और इजिप्ट के बीच 8 बजे मैच शुरू होगा। ग्रुप एच में स्पेन और केप वर्दे के बीच में मैच होने वाला है, वो तो फुल टाइम हो चुका है। एंड सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे के बीच रात 11 बजे मैच शुरू होने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रॉक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 7:22। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ। मंडे शुरू हो गया, मंडे के पहले आवर में आप और हम मिल लिए, हाय हेलो हो गई। एंड अब आ रही है ब्यूटीफुल स्टोरीज आप सबके लाइफ में से। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बारे में लोग जानें। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये तो इतना सुंदर है ना, ये किसी के साथ में तो शेयर होनी ही चाहिए चीज़। एंड इसीलिए मैं ऐसे सवाल लेके आती हूँ कि आपकी जो स्टोरीज हैं उसमें मुझे डेफिनेटली इंटरेस्ट है। बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन मतलब है क्या? आप कुछ लोग कहेंगे यू आर वेरी नोजी, तुम्हें क्या करना है हमारी लाइफ से, हाय हाय इतना नेगेटिविटी में क्यों जाए, हम तो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हम इतने प्यार से पूछ रहे हैं। तो इतने प्यार से, उतने ही प्यार से आप भी अपनी अपनी स्टोरीज बताएं। एंड मेरे साइलेंट लिसनर्स जी, भाई साहब आप, हाँ आप मुस्कुराइए बस, हाँ मतलब हाय हेलो अश्विनी नहीं करेंगे। एंड दीदी आप क्या कर रही हैं? आप ड्राइविंग कर रही हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, ऐ भी बैठी है, काम भी करी, कुछ भी, हेलो अश्विनी आ सकता है, बड़ा मज़ा आएगा मुझे भी। सो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाली हूँ ब्लैक कॉफ़ी की क्या थियरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं कुछ ही देर में।
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
9: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: लंदन। गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फुल अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिजवे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन।
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है.
15: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
16: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे?
17: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं.
15: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
18: Dulhan ke liye makeup.
15: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
19: Like a Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Cool aur online suno likeagold.com pe.
20: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए तीन अमेजिंग फीचर्स यादों की बरात, जिसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट आवर का फीचर. सेकंड आवर है इमोशन ऑफ द डे, तो मोटिवेशनल मंडे होगा. सेकंड आवर में गजल या कव्वाली, बताइए मैं क्या सुनाने वाली. ओके, मैं आप सबसे कह रही थी कि ब्लैक कॉफी थियोरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ. उसके पहले बताऊँ आप सबको, आप सबकी जो स्टोरीज़ हैं वो इतनी सुंदर स्टोरीज है. किसी ने जब वो 11 साल के थे उन्हें तब वॉच मिली, किसी ने अपने कमाई से 16th ईयर में अपने लिए वॉच खरीदी, किसी को एंगेजमेंट के टाइम मिली, किसी के पापा ने घड़ी लेके दी. बहुत बहुत सुंदर जर्नीज होती है, और वो जो पहली वॉच होती है ना, वो हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल होती है. होता है ना, पहली चीज़ें कुछ कुछ बहुत स्पेशल होती हैं. ओके, तो व्हाट इज़ नाउ ब्लैक कॉफ़ी थियरी. तो ऐसा है कि कई लोग जो हैं ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं. ब्लैक कॉफ़ी एक अलग सा नुस्खा बता रही हूँ. सुबह उठते से अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी में एक चम्मच घी डाल के पी लिया, तो एक तो आपकी एनर्जी लेवल बड़ी अच्छी रहेगी, दूसरा आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, तीसरा जो बहुत खाने में इंटरेस्टेड लोग हैं उनकी भूख जो है कंट्रोल में रहेगी. नाउ लेट्स कम टू द ब्लैक कॉफ़ी थियरी. ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं वो ज़िंदगी जिस भी तरीके से आती ना उसे एक्सेप्ट करते हैं. नाउ लिसन केयरफुली, हम लोग कॉफ़ी में शुगर डालते हैं उसको मीठा बनाने के लिए, हम लोग दूध ऐड करते हैं उसका रंग और टेस्ट बदलने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी इट्सेल्फ होती है कड़वी. हम उसे अपनी तरीके से ढालना चाहते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी उस कॉफ़ी की जो है वो जितनी ओरिजिनल होती है, जितनी कड़वी होती है, वो उतनी ही आपके हेल्थ के लिए बेटर होती है. वैसे ही जो लोग ये ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं एज ब्लैक कॉफ़ी, वो ज़िंदगी को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो आती है, रियल फेजेस लेके. जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है ना, कभी सुख तो कभी दुख है, उस चीज़ को वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं. हे, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी हूँ मतलब मैं ज़िंदगी को एक्सेप्ट करने लगी हूँ काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से. आप नहीं कि आई एम अ चाय पर्सन, बट आई लव टू हैव माय सुबह वाली ब्लैक कॉफ़ी विद एक चम्मच दो चम्मच घी के साथ में. सो कोई आपको ब्लैक कॉफ़ी लेते हुए दिखे तो ये कैसे इतनी कड़वी कॉफ़ी पी लेते हो, ये उन्हें बोलने मत चाहिएगा, क्योंकि शायद वो काफ़ी सुलझी हुई पर्सनालिटी होगी. कैसी लगी थ्योरी लिख के बताइए जरा. नेक्स्ट इज यादों की बारात.
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Shri Jagannath Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka labh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
8: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे.
9: मैं छे ने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई ली थी.
8: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे.
9: बेहतर कलाक मत पाछो आवी जस ने पछि बधु ऑलराइट थई जशे.
8: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून. फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल.
10: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Gold.

0: इमोशन ऑफ द डे फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
5: हमारे क्रिकेट करेस्पॉन्डेंट कमल प्रभाकर जी ग्राउंड पे हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है वहाँ पे, कैसे चल रहा है क्रिकेट की अपडेट्स के लिए. ओवर टू यू कमल जी.
6: हाँ जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग, ऑल वेल?
5: या गुड, थैंक यू.
6: ग्रेट. सो लिसन, एट द मोमेंट टुडे इज अ डे ऑफ फॉर एवरीबॉडी, तो रिलैक्स कर रहे हैं एंड दे गो टू मूव, सो दे गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूके में. तो नाउ द गेम्स विल स्टार्ट टुमारो, विच टुमारो वीव गॉट न्यूजीलैंड प्लेइंग श्रीलंका इन द मॉर्निंग, और आफ्टरनून में वीव गॉट द होम टीम इंग्लैंड टेकिंग ऑन आयरलैंड. सो आई थिंक इज गोना बी बेटर फायरवर्क्स टुमारो. गुड, द टूर्नामेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाई डे. वी हैड अ ग्रेट गेम यस्टरडे विद इंडिया पाकिस्तान, विच इंडिया वन यस्टरडे, बट पाकिस्तान गेव अ गुड फाइट. तो जैसे देख रहा है, यू नो, लाइक द गर्ल्स आर डूइंग अमेजिंग, द स्किल्स, द फिटनेस एंड यू नो द वुमेन क्रिकेट हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. सीरियसली,
5: थैंक यू कमल जी, थैंक यू फॉर द अपडेट एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग मैचेस. थैंक यू सो मच.
6: टेक केयर, बाय बाय.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
7: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.

0: Podcast episode 20 is out, The Bollywood Rewind, and it is hosted by Anujarya. Was this decade a perfect mix of stars, songs and romance? बहुत सारी चीजों पे बातें हुई हैं. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. Like extra is here. मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग चोबित अश्विनी. आप लोगों के मैसेजेस बैक टू बैक आ रहे हैं, खाने पीने के फोटोज आ रहे हैं, अपने मन की बातें आप हमें बता रहे हैं. और जो पहले आवर में मैंने सवाल पूछा था कि आपको आपकी ज़िंदगी की पहली रिस्ट वॉच कब मिली थी, उसकी बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ आप मुझे बता रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग अपनी स्टोरीज भी सुनाते हैं. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जंगली फिल्म से ये गीत. 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी.
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
5: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
4: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
5: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
4: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
5: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
4: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
5: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
6: બેકસ્ટેજ સિબ્લિંગ્સ ફર્સ્ટ એવર યુકે પરફોર્મન્સ હેપનિંગ ઓન ધ 9th એન્ડ 10th ઓફ ઓક્ટોબર 2026 એટ SKL PC નોર્થોલ્ટ. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
7: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है.
6: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
8: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
6: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
9: Maa, dulhan ke liye makeup.
6: Shut up! For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. Ya visit कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at likeradio.com and the Like a Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
12: चाहे कोई मुझे जंगली कहे

0: कुछ कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
1: लाइका गो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 126.94 Indian rupee, 373.36 Pakistani rupee, 446.20 Sri Lankan rupee, 164.72 Bangladeshi taka, 83.75 Afghan Afghani, 173.62 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £103.72 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 8:50. आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold Radio in London and Leica Radio in Greater Manchester. This is the evening show with Ashwini. Monday से Friday रहता है आपका हमारा साथ। तो second hour का जो motivational Monday था वो आप सबको सुनाया हमने। वो रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। तो आप में से हर एक इंसान जिसने आज ये गीत सुना है, आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। होता है कुछ लोगों की स्टोरीज सामने आती हैं, कुछ लोगों की स्टोरीज सामने नहीं आती। अगर आपकी स्टोरी किसी के सामने नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप मुकद्दर के सिकंदर नहीं हैं। अपनी अपनी लेवल पे हर कोई एक सेलिब्रिटी है, हर कोई एक स्टार है, क्योंकि हम आपके शूज़ में नहीं और आप हमारे शूज़ में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि हमारी जो जर्नी है वो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, और यही जो हम सीखते हैं यहाँ पे इस शो में, आप अपनी ये पूरी जर्नी हमारे साथ में शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सीखने मिलता है। एंड आई एम ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड कि मैं आप सबसे कनेक्टेड हूँ एक सुंदर माध्यम के द्वारा, जो है ये माइक एंड आर रेडियो। सो हमारा Leica Gold Radio एंड Leica Gold Radio इन लंडन एंड Leica Radio इन ग्रेटर मैनचेस्टर मुझे हर शाम आप सबसे मिलवाता है। इंटरैक्टिव होता है हमारा ये शो, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेरे सवाल आते हैं, आप लोगों के जवाब आते हैं, और हर गीत पे आपकी तरफ से जब वाह वाह आती ना तो और मज़ा आता है। नेक्स्ट ट्रैक भी वाह वाह वाला है, क्योंकि झुक गया आसमान से लता मंगेशकर की आवाज़ में उनसे मिली नज़र।
1: Feel good classics all day. Leica Gold. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
3: Leica Gold. Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners Leica Radio.
4: Hi!
5: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइस लीग अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोर होम लेस्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194 7।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
8: This is huge.
7: Fadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
8: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
7: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
8: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
7: Fadi Kalal, Rayner's Lane. There is only one.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
9: Father son no bond jitlo special che, itli j special film avi rahi che.
11: Uncle tame pehla thi awaz chho.
12: Awaz itli keva.
13: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
12: Maro baap banvani koshish karat tu. बुद्धि बेचिया वैसे तू अरे जिंदगी अभी मौज थी जीव जे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे
13: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
12: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर
14: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
15: द इवनिंग शो विद अश्विनी
16: दिस इज लाइका गोल्ड
17: रेमिनिस दोज क्लासिक्स

0: इस आवर का आगाज हमने किया था लावर इज विच वॉज रिलीज इन 1999, उस फिल्म के गीत आ कहीं दूर चले जाए हम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में, बहुत ही मेलोडियस ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड सेकंड ट्रैक वाज किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में लावारिस, ये भी लावारिस था फ्रॉम 1981, कब के बिछड़े। मैंने सोचा क्यों ना दोनों लावारिस फिल्मों से इस आवर का स्वागत किया जाए, एक 99 की फिल्म, एक 81 की फिल्म। थर्ड आवर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं गज़ल सुनाती हूँ या कव्वाली, इसका अंदाज़ आप लोग लगाते रहते हैं, कितने दिन हो गए हम लोग साथ में और अभी भी मुझे मज़ा आता है जब आप लोग अपने अपने अंदाज़ भेजते हैं कि आज मैं क्या सुनाने वाली हूँ। चलेंगे बिल्कुल उस फीचर की तरफ चलेंगे और आप सभी को बता दें कि आप और हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक कॉम्पिटिशन में, तो ज़रा तैयार रहिएगा क्योंकि टिकट्स भी मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा कौन सा सवाल पूछने वाली हूँ, क्या है ये कॉम्पिटिशन, बस कुछ ही देर में।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you will get up to 126.70 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you're sending over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.

0: full score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप जी में बेल्जियम और इजिप्ट के बीच मैच चल रहा है, तो इजिप्ट ने एक गोल दागा, 58 मिनट्स हो रखे हैं। एंड सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे में रात 11 बजे मैच शुरू होने वाले हैं। बाकी सारे मैचेस जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: भाई हमारे फुटबॉल स्कोर अपडेट्स के जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे जब भी आप बात करेंगे तो लाइक का ज़रूर मेंशन करिए, तो रॉक लॉ जो है उनकी तरफ से आपको 15 मिनट्स का लीगल एडवाइस फ्री मिलने वाला है। कंपटीशन आ रहा है बस कुछ ही देर में। और वीकेंड पे मैंने क्या किया, तो वीकेंड पे बड़ा मज़ा आया बिकॉज हम लोग सभी जो हैं हम लोग गए थे आतिफ असलम का शो देखने के लिए। And with me, I did attend some other events as well, but something happened to my right feet and it's all swollen up. फिर मैं you know हमारा राजवीर जो है he was teasing me, he was pulling my leg and saying कि हम सबको बोलेंगे कि हमारे पास लंगड़ा त्यागी है। तो जी हाँ, बिल्कुल अपने लंगड़ाते हुए पैर के साथ मैं पहुँची बिकॉज मुझे अपनी टीम के साथ मिलना था, मस्ती करनी थी। एंड देन आ गई हूँ मैं भी, हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही होगी और उनके कुछ इश्यूज हैं, तो उनके साथ मैं हाँ डरो ना मैं भी हूँ, लंगड़ाते हुए मैं भी अपने स्टूडियो पहुँची। आई एम नॉट डांसिंग, जब गाने आ रहे हैं जैसे मैं जनरली बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ वैसे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली कुछ पेन वेन तो रहता है, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ ना, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी एंड शो मस्ट गो ऑन इन लाइफ। सो हमेशा जो भी चीज़ें हैं उसके साथ में एक्सेप्ट करते चलें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलें, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तभी तो कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हम आपको सुना रहे हैं हरिहरन की आवाज़ में गीत, उसके बाद में आज मंडे है भाई तो आज होती है गज़ल, गज़ल भी लेके आपके लिए हाजिर हो गई हूँ, लेकिन इसी बीच होने वाला है कॉम्पिटिशन, तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dell, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is. If you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: Two businesses,
7: same town,
6: same service.
7: One appears on page one of Google,
6: the other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question.
6: When your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
10: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
11: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
10: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
12: Maa, dulhan ke liye makeup.
10: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 9:30, 9:30। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। ओके, मुझे ना आप लोगों के साथ में इसीलिए प्रोग्राम पेश करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं जितना ऐसे इंटरेक्शन हमारी होती ना, आप लोग ना मुझे हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जग्गी जी है ना, मन्ना डे की आवाज़ में मैंने सुनाया सफ़र फिल्म से तुझको चलना होगा और मैं अपने पैर के बारे में बता रही थी एंड जग्गी जी ने वहाँ कहा क्या बात है तुझको चलना होगा। सीरियसली पैर की हालत क्या और सुनाया कौन सा गाना, तुझको चलना होगा। बट वही तो मैंने कहा ना जी कि द शो मस्ट गो ऑन। ओके चलिए, तो भाई जो भी गुजराती समझते हैं, जिनको गुजराती आती है, अगर वही लोग पार्टिसिपेट करें तो अच्छा है, शायद वो लोग ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय कर पाए इस फिल्म को। तो लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ टीम्ड अप एक्सक्लूसिवली विद धर्मा प्रोडक्शन फॉर द गुजराती फिल्म जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंदेरिया विच रिलीजेज एट सिनेमाज दिस वीकेंड। वी हैव अ पेयर ऑफ टिकट्स, दो टिकट्स हम लोग देने वाले हैं, स्पेशल इन्वाइट है क्योंकि ये स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है जिंदगी वंस मोर एट द कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन ऑक्सफर्ड स्ट्रीट स्टेशन। वही लोग एक्चुअली इस कॉम्पिटिशन के लिए अपना नाम फटाफट दे दीजिए जो जा सकेंगे। हाँ तो ज़रूर अप्लाई करिए इस कॉम्पिटिशन में, अभी फटाफट आपको भेजना है अपना नाम और फोन नंबर। द स्क्रीनिंग takes place on Thursday. It's a weekday. Thursday, 18th of June, शाम 6 बजे। अगर आप 18th of June, Thursday, शाम 6 बजे जा सकते हैं तो ही tickets के लिए apply करिए, क्यों अगर आप नहीं जा सकते तो किसी और को एटलीस्ट ये पेयर ऑफ tickets मिल जाएंगे, दो tickets मिलेंगे। Winners will need to collect the tickets from the venue on the night of the screening. The tickets cannot be exchanged with any other screening. केवल और केवल इस फिल्म के लिए दो tickets के लिए, तो फटाफट अपना नाम और फोन नंबर लिख के मुझे भेजिए अगर आपको गुजराती समझती है, गुजराती अच्छी लगती, गुजराती आती है और इस फिल्म को देखना चाहते, तो अभी फटाफट अपना नाम और नंबर मुझे भेजिए। गजल इज नेक्स्ट।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।
1: गजल

0: Puzzle. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए जी एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 37 मिनट्स पास्ट 9:15 ऑफ जून मंडे। हम लोग बस शो के अंत की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हम बढ़ते जा रहे हैं। और आप सबका जब साथ मिलता है ना तो प्रोग्राम करने में इतना मज़ा आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। ओके जी, सो गुजराती फिल्म्स की जो विनर हैं, जिनको दो टिकट्स मिलने वाली हैं, दैट इज़ सुमैला मुंगुर जी, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं दो टिकट्स। तो आपकी डिटेल्स हमने ले ली है, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आगे कहाँ कब कैसे पहुँचना है, क्या चीज़ें हैं, वो सब डिटेल्स आपको मिलने वाली है। देखिए जब कॉम्पिटिशन आता है तो हम इसीलिए अनाउंस करते हैं कि ध्यान दीजिए, फर्स्ट कम जितना फटाफट जो लोग वो उतना जल्दी उनका नंबर लगेगा फॉर श्योर। कॉम्पिटिशन के तो मजे ये होते हैं कि एक ना मजा आता है कि चलो यार जाएंगे, देखते हैं कि ना, एक ट्राई करते हैं। कभी कभी हमारा लक होता है, कभी कभी चीज़ें हमारे लिए काम में आ जाती है, बस वही तो चीज़ है। ज़िंदगी जो है ना वो ऐसी खट्टी मिट्टी है, और ये खट्टी मिट्टी ज़िंदगी खट्टी कब बन जाती है, जब हमारे पास में चीज़ें नहीं आती, और मीठी कब बनती है, जब हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये खट्टा मीठा शो बिल्कुल आप सुनते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, शाम 7 से 10 बजे तक। मोटिवेशनल मंडे में आपको सुनाया गीत गज़ल आप सबको बहुत पसंद आई है, आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान से ली थी ये गज़ल। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सारी गजलें इस फिल्म की बेहतरीन है, एक से एक जबरदस्त।
0: ये है लाइका गोल्ड,
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7pm with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
4: This is Ashwini, in for Anisa Nazir on The Evening Show. Like a
5: Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे।
10: મે છે ને બેક ટુ બેક 3 મૂવીઝ જોઈ લીધી।
9: ગેટ રેડી ફોર અ ફુલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વીરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી। બધુ ઓલરાઇટ છે,
10: બેટર કલકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધુ ઓલરાઇટ થઈ જશે।
9: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન। ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાસ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ।
11: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે।
12: થિંક યુ માઈટ બી ઓવરપેઇંગ ફોર કાર્ડ પેમેન્ટ્સ? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
13: Backstage Siblings, first ever UK performance, happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1 you'll get 126.75 Indian rupee, 373.08 Pakistani rupee, 445.86 Sri Lankan rupee, 164.6 Bangladeshi taka, 83.75 Afghan Afghani, 173.49 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
14: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £103.49 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: भाई जब मैं आप लोगों को मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देती हूँ कि गुड नाइट थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे शो, उसका तात्पर्य ये होता है क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है आप सबकी कि मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती कि उन तक मेरा थैंक यू ना पहुँचे, तो थोड़ा जल्दी शुरुआत हो जाती है मेरी तरफ से थैंक यू कहने की। तो बिल्कुल ये ना सोचूँ कि ओए क्या ये रफा दफा हो गई क्या, नहीं नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितना प्यार आप लोग हम पे बरसाते हैं, जितना आप लोग हमारा साथ देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बहुत भावनात्मक भी होता है। एक तो आई लव माई हिंदी, हाँ भावनात्मक इस बड़े मुझे इमोशनल लगता है क्योंकि जितना प्यार आप लोग देते हैं, जितनी फीडबैक आप लोगों की तरफ से आती है, जितनी शाबाशी आप लोगों की तरफ से आती है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। भाई गोल्ड नाइट सर्विस ओवरनाइट सर्विस है तो ज़रूर सुनिएगा। रात में नींद नहीं आ रही है, झगड़ा हो गया है, काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जो भी, बिल्कुल हमारी गोल्ड नाइट सर्विस जो ओवरनाइट सर्विस है उसे ज़रूर सुनिएगा। लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। मॉर्निंग में काजल हमारी आती है अपनी सुरीली आवाज़ लेके, सुबह 6 बजे उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। आई लव उनका जो फीचर होता है ना मॉर्निंग मंत्रा, बिल्कुल मेरे यहाँ पे चाय का बर्तन चढ़ता है और वहाँ पे मॉर्निंग मंत्रा शुरू होता है। सो हमेशा कहते हैं कि खाना बनाते समय अगर आप अच्छी अच्छी बातें सोचें और सुने तो उसका इफेक्ट आपके घर वालों पे होता है। तो सोचिए सुबह की चाय मॉर्निंग मंत्रा, आहा मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमेशा कहते रहे प्यार दो प्यार लो, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, प्लीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना करो और पावर का यूज़ तो गलत लोग करते हैं। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे फिर से, टेरिफिक ट्यूसडे। मेरी पड़ोसन जो मुझे घूर घूर को देख रही है, बाय।
4: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
7: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
4: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
14: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
16: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
15: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
16: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
15: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
17: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
18: Uncle tame pehla thi aavaj chho.
19: Aava itle keva.
17: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
19: Maro baap banvani koshish karat tu. बुद्धि बेचिया वैसे तू। अरे जिंदगी अभी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
17: Our Father's Day, feel the emotions, love and family moments with Zindagi Once More in cinemas on 19 June. For more information, visit Bakrania Media on Instagram.
19: तो थई जाए, जिंदगी once more.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
20: Location, location, location.
21: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
20: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
21: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
20: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
20: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
20: high appreciation
21: in Dubai.
22: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris aur timeless beauty of Italy ke through.
23: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
24: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
25: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
26: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya dunia ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: भोले भाले ललुआ, बोले बोले बोले बोले बोले बोले बोले भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है वार।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग भग
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी। धरेगा विदेशी बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम कसम।

0: लायका गोल्ड 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहया छे सखणा रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्य नी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बैंड जी
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me or you.
3: Southall Travel, at all protected.
4: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
5: This is huge.
4: Fadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
5: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
4: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
5: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
4: Fadi Kalal, Rayner's Lane. There is only
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com T&C's apply
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे
8: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आप पवित्र यात्रा पर
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
8: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
7: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
9: यू नो हाउ फैंस शाउट एट फुटबॉल मैचेस
10: वेक अप
9: दैट्स बिकॉज़ साउंड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेल द प्लेयर्स दे आर रबिश वर्क्स इन एडवर्टाइजिंग टू बिकॉज़ व्हेन यू एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग यूजिंग रेडियो Your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Are we there yet?
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simsy before we left London.
12: Simsy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
15: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लायका गोल्ड पर

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
1: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
3: Lattuke halo ne nandala.
1: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
3: Meetha khara.
1: Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
0: Taza kare apni yaadein. Leica Gold ke saath.